0: बस बस बस क्या न्यूज़ का तंगी ने की न्यूज़ का अने को क्या त्याह जाले न मारा तंगल ने आराम सर अंगुत को मी जी ने की करता उसी को भी तीतिया जाए समूह इनके नेत पुजीरो तो आया तू ने कहा सिंह ने तब करा ने स्टेटस 24 आज मंडे को उन्होंने ना कि नाम है तू तेरे तिंकोरे ने करा रहने आज को भी किने त्याग को बका मनुष्य ने बनाया तब का कोई का कुछ रह जरूरत के आज को भी टीम वाले जो को उन्हें वीकेंड नंगों को वीकेंड सा आगो बराबर को नंगों ना तो उसको भी टीम वगैरह की मक्कीलंच ने करा रहने पिक सो मुझे जगह आया सो को निको स्टेटस 24 आज हमें जगह चुगन की नाम इंग्यो तो के स्टेटस 24 आज हमें जगह नाम है नंबर 2 हमें जब बिग 20 आ रहा का जो तू कितने आगो जगह तू 12,000 यानी माँ में जो कुछ जगह मिसिंग नतका तू आ तू 20 आ रहा का आगो मीते बोनस इंग्यो जागे तबान कभी सजे जागे स्टेटस 24 आज इंगे नाम की तुम करे नगर आरन काता उने सो के निराई सिंग की तू को लसका बेतेन यही नाम है ई जो तो स्टेटस 24 आज नंबर 2 स्टेटस 24 आज नंबर 2 जुतु रगा रगा हमें जा रो जितने का कोई के नि आरो ने का की कोजी बोनस नि बोनस को जांग कबिस जांग येते के सिलिंग 200 को ताए सो को टीम की के नोट की न्योने की तुंगन स्टेटस 24 आज नंबर 2 इरो को सरी नि स्टेटस 24 आज माइकस चंगो तगेंगे अनन मोनो रोइनी ओमाई वाबा Mimi na mimi agere magere chini nyone soko ni kope tuale ama mimi na chongleza. Kanya kasi tage ngene le na nyorun tacha femelo.
1: Yamu ni ana serem.
0: Aja mege.
1: Abiru ne ngene mchul ke kura na Emmanuel ba ke mchul le.
0: Karibu sana Emmanuel.
1: Bicha mwana makita kiti chuzo mo.
0: Magio.
1: Na tawane sisi ku just karu chanzo ngata nyumba mpara blanga.
0: Aha.
1: Zamare kule ni ana serem.
0: Oi.
1: Kongoi missing
0: Kongoi amu gaon aise wa ole jao nyurwan koret nagara ara na me

0: आज कसरी नि हुन्छ यसै चौगन यति मुत कोले कोही तक 50 कोही तक 50 कसरी नि हामी जब एकदम नराका छ जब जबेन कि गजी के तुगुल 1000 छ जे के बोनस इन्स्टा 274 आश नम्बर 1 स्टार के न्यू छ नम्बर 1 नतक न हामी त बिक चगा गइन गनि यो के कुरे जितने कुरे विभिन्न का कि गजी 400 जितने कुरे जेन का कि गजी 600 जितने कुरे डेविड का कि गजी अगेन नेंग यो 500 सो हामी जे जुतुंगु नि कोंगे तेंगु नि आगो कोई ते 50 आमे जे बे के जे जुतु रगा रगा की गोजिंग यो रपिनिक चकोरो रनिन 1000 ना के तुगुल और ने जित नेता है नगा कोइन केन बवाना की गुरे ngom की गुरे लेओ ना ती की गोज 1000 जे जेगे सो तुम बिक सो गोल और ने जित आगे नगा कोइन केन बवाएं की गुरे विनी विनी अगेन का की गोजिंग यो 1000 जे जेगे सो तुम बिक सी तू और ने जित आगे नगा को जब जब हे थॉमस का की गोज थॉमस अगेन यो 1000 तुम बिक ताऊ का कोनी बिक सुमुक तुम बिक ते सब पाडो आ तो सब पे के आगे इंडे के शर्मानी ये नो ऐसा करना कि लम तो कुछ स्टेटस 74 आज स्टेटस 74 आज नंबर नंबर इरा का सनी नो ओले मीते नंबर 1 की चुंगो मियान ने मैं मी के इजल के तुंगो स्टेटस 74 आज नंबर 1 स्टेटस 74 आज नंबर 1 ओके बोते सही मैं मिस जुई मैं जलील जगह तो स्टेटस 74 आज नंबर 1 या तो गुल चम्मो अगरा अनमसी मोशे का भी कर बोएंग अगर कि चुंगो मियान ने मैं मी के इजल के तुंगो स्टेटस 74 आज नंबर 1 स्टेटस 74 आज नंबर 1 ओके बोते सही मैं मिस जुई मैं जलील जगह तो स्टेटस 74 आज नंबर 1 या तो गुल चम्मो अगरा अनमसी मोशे का भी कर बोएंग अगर जमे के एकते शे
1: आले ओबे क्या नो वो चेता ना ना चेंग ला वो चेता ना
0: अगर
1: ए मा वो चित कोई अभी आज को चे मुआ के ला ध्यान होगा मुआ जान कोई की भाई भाई ने बारे ये ताके नी मिसरी ने ना गन्ने यार आसरे
0: कौन कोई कबीसा
1: ए अम्मा जी के अम्मा के लांदी को गोवन सी तुरा वाच जो आमेन गुसुतर कान ले के मागेन रोटी के गुसुतर अब तली के देखियो गिरो अब भी चांद को लुगु ने
0: ओए
1: आले आले मते इसमें दिन पाते न रे ये नी लाइन इसको ना
0: कौन कोई कबीसा आया आया आया आया आया को मैं मिसिंग ए कन्या को जब रोइंडा जीता के गुरे मामा शमीला यस
2: हेलो आ सरम
0: ओए
2: अब ना
0: अच्छा मैं के कभी सलब तईनी
2: अच्छा मेरा ना गो मुकन वो बना वो साइड